0: कुछ जाना कुछ कॉकिका
1: राइस एंड शाइन लुक ओके टाइम फॉर कुंतुहन एंड कुलीदाई
2: ओके एफएम
1: ओके मॉर्निंग एक्सप्रेस
3: गाइस गाइस कम हियर आई गॉट अ न्यू डांस आई वांट टू शो यू
4: Oh, I know this. It's the bird dance, where you clap your hands and slap your arms.